आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का डे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छ छम छ छम। एक गण हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: मुश्किल करते सबका जीना नहीं तो
2: नहीं।

0: गारे गारे
1: गारा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: हो गारे गारे
1: ये आम को बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो

0: ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: डर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बॉलीवुड यानी सिर्फ मिक्स मस्ती। अब नाम चेंज हो चुका है मिक्स मस्ती, इस मस्ती भरे गाने के साथ। और सभी का थैंक यू सो मच एक से बढ़कर गाने की डिमांड करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए भाई। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने हैं।

और ये भी लाइन सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है। ये सॉन्ग ओनली डेडिकेटेड फॉर मी।

0: बिल्कुल आशिक भी हूँ और कातिल भी हूँ। और वैसे मैं बता दूँ कि वादों से अपनी मुँह करता नहीं। वैसे मैं आने वाला था 6:30 बजे, लेकिन इतने सिर में दर्द है ना कि क्या बताऊँ। फिर भी मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, इसलिए मैं आ गया सबके बीच। अपना ये आप सबका प्यार मुझे खींच रहा है, लेकिन आज मैं आने वाला नहीं था। और एक दुख भरी खबर भी है कि मेरा यानी 5 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है, यानी शुरू होने वाला है, और वो होगा 27 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक। मैं वहाँ पे 5 दिन बिजी रहूंगा और 5 दिन तक आप सबसे दूर रहूंगा। बिल्कुल, यानी कि 5 दिन तक माय गॉड मैं कैसे रहूंगा आप सबके बिना। मुझे बहुत सोच सोच के रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, सबसे और सभी दोस्तों का मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई सरफराज जी साउथ अफ्रीका से। वालेकुम सलाम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है नाहिद अंसारी जी। साथ ही साथ जुड़े हैं हमारे अशोक देशमुख जी, वेलकम करते हैं आपका भी अशोक देशमुख जी। और जुड़ने वाले में है हमारे सर्वेश भागा जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये क्या नाम है इनका, शेख इन ताजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं शेख ताजिम जी। साथ ही साथ जुड़े हैं कपूर चंद जी, वेलकम करते हैं कपूर चंद जी आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी, वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ हमारे आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो, जुड़ चुके हैं आप, वेलकम है आपका। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आगरा से। और फूलेबाग संजू भाव जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी फूलेबाग संजू भाव जी। अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारी नंदनी माँ जी, आपको मेरा सादर प्रणाम है, वेलकम है माँ जी आपका भी। और बाबूलाल अंजाना जी वेलकम। और मीना इब्राहिम जी वेलकम वेलकम वेलकम आपका भी यूएस से। और गजानंद सलोकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अमीना खान जी खुश आमदीद, वेलकम है आपका भी। और बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और हमारे संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार वेलकम करते हैं आपका भी। और नीलेश वीरोकार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम, मतलब जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं गाना मतलब शामिल करने वाला हूँ वो कौन सा है भाई, अब तो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला आज जो मैं गाना ओके ओके आते हैं इस एड के बाद।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। क्या आपकी आवाज में है वो जादू जो हर दिल को छू जाए? क्या आप बनना चाहते हैं अगला सिंगिंग स्टार? तो इंतजार किस बात का, रेडियो हॉटस्टार लेकर आया है स्टार सिंगर आइडल सीजन 2। एक ऐसा मंच जहां आपके हुनर को मिलेगी नई पहचान और आपके सपनों को मिलेंगी नई पंख। रजिस्ट्रेशन अब ओपन है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएं, दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, अपनी जानकारी भरें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। हो सकता है अगला बड़ा सितारा आप ही हो। स्टार सिंगर आइडल सीजन 2, कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटेड बाय आरजे अमन, प्रेजेंटेड बाय रेडियो हॉटस्टार, क्रिएटिव डायरेक्शन आरजे वंशिका, होस्टेड बाय आरजे अमन, स्पॉन्सर्ड बाय मोहम्मद महमूद आलम, रियाद सऊदी अरेबिया, पावर्ड बाय रेडियो हॉटस्टार। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे।
0: ओके जी, तो एंजॉय कीजिए। सबसे पहला अमीना खान जी के पसंद का ये गाना, एंजॉय द ट्रैक।
2: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक 1।

0: डर है।
1: तुम सुन नहीं रहे हो यार।
2: ट्रेन का भी लॉज का ना। भी जरा दिल तो दे दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा दिल तो दे दे जाना।
1: कैंस में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।

0: बिल्कुल, और ये मतलब मैं भी आपके शहर में ही हूँ और आपके पास हूँ, आपके दिल के करीब हूँ बिल्कुल। तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार अमन के साथ, जो आपको दीवाना बनाते हैं। नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नाजिम जी आपका। और ये गाना मैंने पहली बार सुना है, मुझे भी अच्छा। जी और गोविंदा खंडा दे कुमार जी जुड़ चुके हैं, यानी पटना बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी अशोक कुमार जी। और जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। अमीना जी लेते हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और उसके बाद से है हमारे ये प्रमोद कुमार जी हैं, वेलकम है करते हैं, लिखते हैं शानदार गाना ये चल रहा है। और मंगेश जसमुख जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अनिल मेहता लिखते हैं कि ये गाना मैंने पहली बार सुना, मुझे अच्छा लगा, बेस्ट सॉन्ग लगा, थैंक यू सो मच। गजानंद जी लिखते हैं कि अमीना खान जी के पसंद शानदार, सुनकर बहुत ही आनंद आया। अच्छा, और अमीना जी लिखते हैं कि अमीना खान जी के पसंद मुझे बहुत खूबसूरत लगी है, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन सर
0: जी, बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद, कार्यक्रम से मैं भी जुड़ गया हूँ और पहले ही गाना बहुत शानदार सुनने को मिला, बहुत अलग गाना था और बहुत खूबसूरत गाना था। मुझे ये गाना पहली बार मैंने ये गाना सुना तो मुझे अच्छा लगा गाना। अमन सर जी, आज की सुपर मस्ती बहुत अच्छी होने वाली है ऐसा लगता है मुझे। तो अमन सर जी, आप 5 दिन नहीं है तो हम आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी है तो हम आपको हैप्पी जर्नी जरूर कहेंगे।
0: थैंक यू सो मच आपका। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो आरजे सोनी जी का है, सुनवाना चाहूं, ये चाहती है सभी दोस्तों को, तो सुनवा दिया। सोनी जी एंजॉय कीजिए।

और जो भी दोस्त जो कभी उन्हें फरमाइश करने नहीं आता है, मतलब रिक्वेस्ट भेजने या डिमांड करने नहीं आता है, जो सॉन्ग रिक्वेस्ट से नहीं फरमाइश कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है कि वो रेडियो हॉटस्टार के जो नंबर है 9135841232 पे नंबर पे कॉल करके हमसे बात करते हुए आज के दिन गाना सुन सकते हैं, जो भी गाना सुनना चाहें, भोजपुरी हिंदी सुन सकते हैं। लेकिन आपको ये व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, ओके? आपको नंबर पे कॉल

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे हुकुम चंद जंगर जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अमीना खान लिखती हैं कि थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए, गाने को पसंद करने के लिए। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद मुझे शानदार लगे, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक देते हैं
1: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी। और सभी भाई का गाना बहुत अच्छा लगता है, आपका ओपनिंग सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और संजय साहनी जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: नमस्ते अमन सर जी, पहले भोजपुरी तो बजाए खेसारी लाल का गाना तो ठीक था, लेकिन दम नहीं था। हमको सुना दीजिए ओल्ड सॉन्ग।
0: यहाँ पे नहीं, आप अभी तो सॉन्ग रिक्वेस्ट से भेज सकते हैं, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजिए, मैं जरूर शामिल करूंगा, कोशिश करूंगा। और गजानंद जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। जाकिर खान लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूं, वेलकम है, वेलकम अस्सलाम। और अनिल मेहता लिखते हैं कि गाना एकदम यानी कि मस्त, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आएगा समझ में, धीरे धीरे सीख जाइएगा आप भी, जैसे कि मैं सीख रहा हूँ आप सभी के भाषाओं को। मीना जी लिखते हैं कि वाह ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और फुलेवर संजू भाव लिखते हैं कि अमन जी आपका ओपनिंग सॉन्ग एकदम ललन टॉप रहा, और अमीना खान जी का गाना इनका तो लाजवाब है, पहली बार सुना है। और आरजे सोनी जी का भोजपुरी गीत भी बहुत ही सुपरहिट लगा है, धन्यवाद देते हैं। और दिल प्राण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे एमडी यानी कि नाजिम जी का है, और ये सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, एक निगाह में क्या ले गया कोई, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। इंजॉय कीजिए एमडी नाजिम जी इतना प्यारा गाने को।

0: जी अरुण मंडल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, बताइए कैसे हैं आप।
1: हाँ जी सर, अभी आप बताए कि गाना सुनने का है तो ये कॉल कॉल कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे फोन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है, आप तो मुझे फरमाइश भेजते हैं ना, है कि नहीं? ये उन लोग के लिए है जो लोग फरमाइश नहीं करना जानते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और गाने सुन सकते हैं, बिल्कुल है ना।
1: तो सर मैं आज नहीं भेजा था।
0: नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, ये उन लोग के लिए है जो लोग फरमाइश भेजना नहीं जानते, नहीं भेज सकते हैं, वो उनके लिए वो कॉलिंग सिस्टम रखा गया है, समझ में आई बात?
1: अच्छा,
0: ओके, धन्यवाद। ओके, तो ये चीज, ये मतलब जी, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि जीत ये उन लोग के लिए है जो लोग सिर्फ मतलब यानी कि कभी रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से वो अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट यानी करना चाहते हैं लेकिन भेज नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि सॉन्ग रिक्वेस्ट कैसे करना है, अपनी डिमांड को कैसे भेजनी है, वो नहीं जानते हैं, वो उनके लिए ऑप्शन है, वो मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं, अभी कॉल करके अभी सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे पास अभी फीडबैक आया, मैं शामिल कर रहा हूँ। जितेंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एमडी नाजिम जी का डिमांड बेहतरीन, लाजवाब। और फिलहाल अक्सर जो भाव क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: हमारे प्रिय मित्र एमडी नाजिम जी, आपकी फरमाइश हमें बहुत अच्छी लगी और थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने गीत में याद किया। अमन सर जी आपको भी शुक्रिया, आपने हमारे मित्र नाजिम जी इनकी फरमाइश चलाई। मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद,
0: वेलकम जी आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि एमडी नाजिम जी की पसंद मुझे बहुत ही अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर नाजिम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना बहुत जल्दी प्ले कर दिया। ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं गाने स्टेप बाई स्टेप प्ले करता हूँ, जो गाना जहाँ फिट बैठता है मैं वहाँ जरूर प्ले करता हूँ। नाहिद जी लिखते हैं कि वाओ सुपर अमेजिंग पसंद के लिए थैंक यू सो मच नाजिम जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाजिम जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और मीना जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, मजा आ गया। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि इस खूबसूरत डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं नाजिम जी को। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि न जाने की निगाह में क्या ले गया कोई, बहुत ही शानदार गाना सुनकर दिल खुश हो गया। इसी बात पर इन्हीं लोगों का जो गुरु फरमाइश है शामिल करता हूं, जिसमें शामिल है हमारे अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी और आसमाराम पाटिल जी और सैयद यूनुस जी।
3: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
3: मैं निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
3: आज का थीम है स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है महासंग्राम और गाने का बोल है आई लव यू प्यार करू छो झाला मला प्रेम झाला। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट करता हूँ, और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
4: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है महासंग्राम, गाने का बोला है आई लव यू प्यार करू छू, और हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा हाँ जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, परेश किशोर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश, सनी कुमार, मीनू कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे मिस परमार जी, आर सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के अमन सर जी।
5: अस्सलाम वालेकुम आरजे अमन सर जी, मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी, और आज के शो में एक गीत लेकर आया था सर जी मैं, मस्ती भरा, फिल्म का नाम है महासंग्राम और गीत के बोले आई लव यू प्यार करी छो झाला माला प्रेम झाला, ये गीत के बोले सर जी।
0: okay.
5: और ये गीत सभी को डेडिकेट है, जितने भी रेडियो हॉटस्टार सुन रहे हैं उन सबको ये सॉन्ग डेडिकेट है, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।
0: okay.
5: थैंक यू आरजे अमन सर जी।
0: और मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, इन व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी है, नंबर पे कॉल कीजिएगा तो जरूर मैं रिसीव करूंगा,

0: बिल्कुल आई लव यू और प्रेम कर छू वाला गाना अच्छा लगा, और वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। शाहिब हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आपका इस तरह गानों के बीच बीच में गाना गाने में और जान डाल देता है।
0: थैंक यू सो मच।
1: काफी अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार आपका इस प्रोग्राम को सुनते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: काफी अच्छे अच्छे पुरानी और 90s जमाने की आप गाने बजाते हैं।
0: जी जी।
1: तो बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है पूरे घर का।
0: धन्यवाद।
1: तो काफी थैंक्स इसके लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: इसी तरह बजाते रहिए।
0: और हौसला अफजाई करने के लिए बहुत शुक्रिया भाई हमारे शंकर गुप्ता जी, बहुत वेलकम करते हैं आपका, दिल से स्वागत है आपका। एस खानम जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदीद आपका। और गजानंद जी लिखते हैं गादानी अमन जी, हमारे अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी और आत्माराम पाटिल जी, सर जी सभी की पसंद शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। सभी दोस्तों को ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: हरजय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा चार भाई, हमारा अशोक देशमुख जी का, आत्माराम पाटिल जी का, सैयदुल जी का, चार भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू सर।
0: ओके जी धन्यवाद, आप तो भी रहते हैं। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। एक फोन आया हुआ है, उठाते हैं। हेलो हेलो।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, आपका शुभ नाम।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, शुभ नाम आपका।
3: मेरा शुभ नाम राजू सिंह।
0: राजू सिंह जी, जी और कैसे और कहाँ से बात कर रहे हैं राजू सिंह जी?
3: जी मैं बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी चेन्नई में हूँ सर।
0: जी
3: जी बिहार के रहने वाला हूँ, चेन्नई में हूँ।
0: अच्छा, बिहार के रहने वाले और चेन्नई में हैं, तो वहाँ पे चेन्नई में क्या करते हैं आप?
3: जी जी चेन्नई में सर वर्क करते हैं, काम करते हैं सर।
0: अच्छा, काम करते हैं। और तो रेडियो हॉट स्टार आप कब से सुनते हैं?
3: हो गया सर, एक साल हो गया सर।
0: ओके,
3: बहुत मजा लगता, अच्छा लगता है सर।
0: चलिए धन्यवाद देते हैं। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
3: जी आज भोजपुरी गाना सर सुनना चाहता हूँ।
0: जरा बताइए, अगर भोजपुरी अच्छा गाना होगा तो जरूर प्ले करूंगा।
3: जी जी जी मनोज तिवारी का, वो मनोज तिवारी मिर्जुल का सुनवा दीजिए सर, कोई भी सॉन्ग अच्छा सा।
0: ओके, भौजी करब ना बिया।
3: जी जी जी सर, ओके ओके ओके।
0: हनु अच्छा बानु।
3: जी जी जी।
0: अरे गनवा बढ़िया बानु।
3: जी जी बढ़िया बा।
0: और ही बताइए, तो बिहार के हालचाल?
3: सर बिहार में तो इस वक्त नहीं है सर, लेकिन बिहार का हालचाल बढ़िया है, मौसम भी वहाँ का सही है, चेन्नई का भी मौसम सही है, यहाँ का भी।
0: चलिए
3: सर मौसम का।
0: ओके, तो गाना गाना आपका मैं प्ले कर दूँ?
3: जी जी ओके सर,
0: एंजॉय कीजिए।

0: बुझला। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत है। और यहाँ पे बिट्टू जी लिखते हैं कि नमस्कार अमन जी, मैं भी जुड़ गया हूँ जी, वेलकम है आपका भी। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी श्रोताओं ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी अशोक देशमुख जी आपका भी। और यहाँ पे आत्मराम जी लिखते हैं कि हमारा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी। और सैयद यून जी क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: थैंक यू आरजे अमन सर जी, हमारा गीत प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सैयद यून सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी।
0: और यहाँ पे रवि मारे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और यहाँ अमीना खान जी लिखते हैं जबरदस्त ये डिमांड थी और मजा आ गया। ओके ओके। और यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड, लाजवाब मजा आ रहा है सुनके। दत्ता जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्ता करम जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे भाई साहब की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, शुक्रिया इस गाने के लिए। और यहाँ पे संजय पटेल जी यहाँ पे जो ये लिखती है कि मस्त गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो एस खानम जी का डिमांड मुझे दिख रहा है कि दिल ना बिकाऊ हमार बा। अच्छा जी, ओहो ये बात बा।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड एस खानम जी की, सुनकर मजा आ गया सुनकर। और यहाँ पे नाहिद जी, वाव क्या डिमांड है एस खानम जी, थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना, एकदम नीक लागल है सुनके, मजा आ गया। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, दिल खुश कर दिया, धन्यवाद देते हैं। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ। जी वेलकम है कपूर चंद जी आपका भी। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे प्रमोद कुमार जी का है, और सभी दोस्तों को ये डेडिकेट करना चाहते हैं। तो भाई प्रमोद कुमार जी, मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हो, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं। वैसे गाना बहुत ही लाजवाब था, दाता जी लिखते हैं प्रमोद जी का गाना मुझे बहुत सुपरहिट लगा है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और नाजिन जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग प्रमोद जी, एंड ना हमारी ये हमारी माँ जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गाना है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। एस खानम जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और रिप्लाई भजन भी अच्छा लगा। ओके थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच हमारे गाने को प्ले करने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी कि प्रियंका जी का। और प्रियंका जी इंजॉय कीजिए, आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते।

बिल्कुल, आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते, वैसे ये फीडबैक भी ना होते, ना ही जी लिखते हैं कि वाह सुपर डिमांड के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अनिल मेहता लिखते हैं वाह बहुत ही शानदार पसंद, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये यानी कि प्रियंका जी की च्वाइस, आप जो मेरे मीत ना होते, सुपर लगा है, मजा आ गया सुन के। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त फरमाइश और मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड जी, थैंक यू सो मच।

और यहाँ पे आरजे सोनी जी लिखते हैं कि लोग लोग ये कहते हैं कि गीत तो सुरों से बनते हैं, लेकिन लेकिन मैं कहता हूँ कि गीत तो किसी अपने के एहसास से जन्म लेते हैं। और तुम मेरे मित ना होते तो मेरे होंठों पे ये गीत ना होते, और शायद मेरी जिंदगी भी जिंदगी

0: सुनने का है,
1: मजा
0: जो
1: आ जाएगा।
0: बहुत मस्ती भरा गाना है, और फिल्म का नाम है हम दोनों। अमन सर जी जो हम दोनों फिल्म है, जो नाना पाटेकर और ऋषि कपूर पर फिल्माया हुआ गाना है, और गाने के बोल है, अंबर की चांदनी सूरज की रोशनी क्या चीज है लड़की।
1: अच्छा
0: अमन सर जी ये गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, तो
1: ओके,
0: ये
1: थैंक
0: गाना मैं सबसे पहले आपको डेडिकेट
1: यू सो
0: करूँगा,
1: मच,
0: क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत शानदार आप पेश कर रहे हो।
1: थैंक यू सो मच।
0: फिर आपकी सुंदरता की मूरत,
1: हाय थैंक यू सो मच सुन के
0: इन
1: लिए।
0: दोनों के लिए भी ये गाना मैं सबसे पहले डेडिकेट करूँगा। फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेज भगत जी, मोहन नेवारी जी, दत्ता कदम जी, अमोल कांबळे जी, आनंद कुलकर्णी जी, और आरजे वंशिका जी, और जितने भी मेरे रेडियो हॉटस्टार के दोस्त हैं, तो मैं सभी के लिए ये गाना मैं आज डेडिकेट करूंगा। तो अमन सर जी गाना सुनवा दो।
1: ओके
0: धन्यवाद।
1: जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को अंबर की चांदनी।

वेलकम बैक। और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं बहुत सारे। और सबसे पहले तो यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल चॉइस जी, बिल्कुल। और फुलेवा संजय भाव लिखते हैं कि आप जो मेरे मित ना होते, फोटो पे मेरे गीत ना होते, ये किन की डिमांड है? ये प्रियंका जी की डिमांड थी, प्रियंका जी। ओके। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि

0: जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और असलम राना जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि आदरणीय है। हमारे यानी कि प्रमोद भाई जी का गाना सुपर डुपर हिट लगा है और उन अनसुना सा गीत लगा, एंड थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे अपने डिमांड में शामिल किया। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: जय अमन सर जी, मिसाल अंगद जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि अंगद जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मंगेश देशमुख जी। राधा कृष्ण को भी बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मिसाल अंगद जी का डिमांड मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे पास वो कपूर चंद जी का, और कपूर चंद जी सुनाना चाहते हैं सभी दोस्तों को, डोंट टच माई गगरिया, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक, डोंट टच मी। अच्छा, और मीना जी लेते हैं ऑसम डिमांड, थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल जी लेते हैं बहुत ही इस गाने को, बहुत दिनों बाद मैंने सुना है, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद। और प्रमोद कुमार लिखते हैं डोंट टच मी घघरिया, कपूर चंद जी का डिमांड मुझे बहुत पसंद आया। और पूरे वक्त संजय भाव क्या कहते हैं,
1: आमचे परम मित्र अंगद मिसाळ जी, आज जी आपली फरमाइश मला खूप आवडली आणि मी तुम्हाला अगदी मनापासून धन्यवाद बोलू इच्छितो। तुम्ही इतकं छान से गीत ऐकवलं आणि आम्हाला तुमच्या गाण्यात सामील देखील केलं, खरंच खूप छान आणि अप्रतिम आजची आपली फरमाइश होती। मी फुले भक्त संजू भाऊ, अमन सर जी आपको भी शुक्रिया, आपने हमारे मित्र मिसाळ जी इनकी फरमाइश चलाई। और अभी जो फरमाइश चल रही है कपूर चंद जी इनकी, इनका गीत भी एकदम डांसिंग सॉन्ग रहा और मज़ा आ गया। और मिसाळ साहब के पहले आपने प्रियंका जी इनका गीत चलाया सर, वो उनका गीत सीधा दिल में उतर गया। और आज का कार्यक्रम भी आप बहुत भी सजा रहे हो, मज़ा आ रहा है सर, सच में ललन टॉप कार्यक्रम आप कर रहे हो। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे राधा कृष्ण को देखते हैं कि ये कपूर चंद जी का डिमांड मुझे अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और कपूर चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच। और फीडबैक,
2: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाळ अंगद, और आपने मेरा गाना सुनवाया अमन सर जी, तो मुझे आप बहुत बहुत खुशी हुई। और अमन सर जी जिस प्रकार आपने गाने के साथ गाना गाया, तो मुझे ये गाने की जो पसंद है और दुगनी हो गई है। अमन सर जी मुझे आप जब गाने के साथ गाना गाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अमन सर जी जितने भी दोस्तों ने इस गाने को फीडबैक दिया, तो सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद दूंगा अमन सर जी। और आज के सभी आइटम गाने मुझे बहुत अच्छे लगे हैं अभी तक जो हुए हैं, तो अमन सर जी आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है और हम आखिर तक सुनेंगे, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद आपका भी। और साथ ही साथ नाही जी लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए, धन्यवाद देते हैं कपूर चंद जी को। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मीना इब्राहिम जी की है, जो वो हमें सुनती हैं यूएसए, तो उनका डिमांड सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है। सुनवा दिया, दिल संबंध, एंजॉय कीजिए।

अपना गाना सुन सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग कभी फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से या सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से नहीं करते हैं, वो लोग मुझे कॉल कर

0: हेलो
1: हेलो, बहुत बहुत वेलकम है। तो सुनते हैं रेडियो हॉटस्टार, और कब से सुनते हैं
0: सर जी? बहुत दिन से सुनते हैं।
1: अच्छा, तो जी जी बोलिए बोलिए।
0: एसएमएस
1: अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: क्या जाना सुबह में यहाँ जी जी और जी
1: है
0: बहुत बड़े चलते हैं।

0: वेलकम है रेडियो हॉटस्टार में, आपका शुभ नाम?
1: मोहम्मद जमीरुल तमिलनाडु से।
0: जी बहुत बहुत वेलकम है मोहम्मद जमीरुल जी, और कैसे हैं?
1: यहाँ सिलाई का काम करते हैं जनाब, आपको तो बताए हुए।
0: अच्छा हाँ, याद आ गया मुझे। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए, सुनवाते हैं, है ना? धन्यवाद।
1: ठीक है,
0: ओके।

वेलकम बैक फीडबैक भी शामिल करता हूँ अब, और कोई कॉल आएगा तो मैं रिसीव करूंगा जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं रिसीव करूंगा, क्योंकि अगर गाने के बीच में मैं कोई भी कॉल नहीं मैं उठाने वाला नहीं हूँ। मीना जी लिखते हैं कि मेरे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये मीना इब्राहिम जी का गाना मुझे बहुत पसंद है, इनका डिमांड बहुत ही प्यारा था, और संदीप पटेल जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है जी बिल्कुल, और नाजिम जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाने के लिए मीना जी को धन्यवाद देते हैं, और मुन्ना भाई जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम भाई जान, और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के, और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नगमा है, और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि बलम केसरिया वाला गाना मुझे अच्छा लगा, ओके जी, अजय कुछ जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना सुनकर मजा आ गया है, और गजानंद जी लिखते हैं कि उठाई ले घूमता चांद देख ले गाना मुझे

जी आपका रेडियो हॉटस्टार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? हेलो हेलो हेलो भाई, कहाँ लगे हुए हैं? अगर आप मुझे अगर आप यानी कि कॉल करते हैं तो प्लीज कॉल पर भी ध्यान दीजिए कि आप कहाँ बात कर रहे हैं। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे अभिषेक तिवारी जी का, और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। सुनवा दिए अभिषेक तिवारी जी। भाई दत्ता करण जी, आप इसकी गलती मत

वेलकम बैक। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि अच्छा, यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि ओ पलम केसरी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मुन्ना जी लिखते हैं कि वंडरफुल सॉन्ग यार, मजा आ गया सुन के। और नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये सुनकर गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डिमांड। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि इस भोजपुरी गाने की डिमांड पर तो बहुत धन्यवाद देते हैं अभिषेक तिवारी जी को। मीना जी लिखते हैं कि ये रिमिक्स गाना भी मुझे अच्छा लगा जी। इसी बात का अगला जो डिमांड है वो नीलेश बिरोकार जी का है, सभी को सुनाना चाहते हैं लव रैप, एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। और यहाँ पे संतोष गौण जी लिखते हैं कि हेलो अमन सर जी, आज के सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोस्त नीलेश ब्रो का जो गाना मुझे अच्छा लगा है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करना। और यहाँ पे अमीना खान जी लिखते हैं वाओ लाजवाब फरमाइश, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो रश्मि जी का है, और ये सभी दोस्तों का डेडिकेट करना चाहते हैं। कह दो कि प्यार है, बिल्कुल कह दो कि प्यार है। इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, आई लव यू, मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है।
1: कह दो ना कि तुमसे प्यार है।
0: बिल्कुल, और फीडबैक भी आया, मतलब आया हुआ है गजानंद जी के दोस्त नीरज गुरुकार जी के पसंद, मुझे पसंद आई है। और राधा कृष्ण को भी देखते सुपर हिट डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे मुन्ना जी लेते हैं वाव अमेजिंग सॉन्ग सुनकर मजा आ गया है। और बाबूलाल जी लेते हैं बिंदिया, अरे बिंदिया जी का डिमांड नहीं था जी, ये था यानी कि रश्मि जी का डिमांड था, रश्मि जी ओके। और अमीना जी लेते हैं वाव बहुत ही खूबसूरत ये नगमा है। और अमीना खान लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा, ओके जी। और इसी बात अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ काजल झक्का जी का। सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं काजल झक्का जी, एंजॉय कीजिए।

कहबू तो जिये बेरानी तू कहबू तो हम मर जाइबो भिड़वे का आ गया है मेरे पास बहुत सारे जी दादा जी ले देखे काजल जी का गाना सुपर हिट लगा है धन्यवाद देते हैं उनको और नहीं जी देते वाह वाह वाह ऑसम अमेजिंग डिमांड के लिए थैंक यू काजल जी प्रमोद कुमार जी लेते बहुत ही बेहतरीन डिमांड मजा आ गया और बाबूलाल जी लेते काजल जी का डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आया और नाजिम जी लेते लाजवाब सॉन्ग है जी बिल्कुल और संतोष गौंड जी लिखते हैं कि क्या हेलो अमन जी ये गाना भोजपुरी बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा ओके ठीक है मैं कोशिश करूंगा और मीना जी लेते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड है थैंक यू सो मच और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि काजल जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया धन्यवाद देते हैं बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये नगमा है मजा के सुन के और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ऑसम एंड सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है सुना चाहते हैं ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आज

0: मुझे।
1: वेलकम बैक, फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं, वाह क्या लाजवाब गाना है, मजा आ गया। ऑसम डिमांड के लिए थैंक यू सो मच सर्वजीत सेठी जी। और ये फीडबैक
2: जय अमन सर जी, सर्वजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। सभी भाई और सभी बहन को भी धन्यवाद देते जो अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को धन्यवाद देते, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और नाहिद जी देते हैं सुपर अमेजिंग पसंद के लिए, थैंक यू सो मच। और बिट्टू मालिक देंगे, बहुत ही लाजवाब डिमांड है। और नाहिद हमारे यहाँ पे नंदनी मालिक थे कि बहुत ही सुंदर गाना जी, बिल्कुल। और अमीना खान जी लिख दीजिए कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब डिमांड जी। और ओके, और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब नगमा, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाओ बहुत ही शानदार पसंद, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ शाहिद अंसारी जी का। शाहिद अंसारी जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक। और सच में ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई एमडी शाहिद अंसारी जी। और ये गाना मतलब मैंने पहले भी सुना है लेकिन अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए अभी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि भाई सरबजीत सेठी जी की पसंद मुझे अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और सर्वेश भगत जी क्या करते हैं,
1: अजय अमन सर जी शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन चॉइस है, थैंक यू सो मच। और संजय पटेल जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि पूजा भास्कर जी का है, और सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो पूजा भास्कर जी इंजॉय कीजिए।

और यहाँ पे बाबूलाल जी से ये पूजा भास्कर जी गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। मीना जी से की हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत मीना कुमारी जी और प्रमोद कुमारी जी, वाओ ऑसम डिमांड है ये पूजा भास्कर जी का, मजा गया। नाजिन दिल से ऑसम ऑसम ऑसम सॉन्ग है। इसके बाद अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हमारे ये मुन्ना जी का है भाई, ये मुन्ना मोबाइल यानी कि मुंबई से, एंजॉय कीजिए।

और इसके बाद अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ नाहिद अंसारी जी का, लेकिन फीडबैक भी आए हुए हैं, लेकिन फीडबैक शामिल करेंगे बाद में। फिलहाल हम नाहिद अंसारी जी का गाना शामिल करते हैं, सभी दोस्तों को वो डेडिकेट करना चाहती हैं, वादों से नहीं यादों से नहीं।

बिल्कुल महबूब जो देख ले एक नजर तो सच में दिल को करार मिलता है, क्यों है ना। एक और काजल देंगे, थैंक यू अमन सर जी, आपने मेरा गाना बजा दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा गाना को मतलब पसंद करके फीडबैक देने के लिए। और इन्होंने एक शायरी लिखा है, लेकिन वो शायरी तो आपको बोर कर ही भेजना होगा, बिना आपके बोले मैं आपकी शायरी में पढ़ने वाला नहीं हूँ। ओके, और यहाँ पे गाना हमारे यानी कि मुन्ना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और मीना जी लिखते हैं कि वाओ नाहिद जी के पसंद मुझे बहुत खुशबत लगी है, थैंक यू सो मच नाहिद जी। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि हमारे मुन्ना जी के पसंद और नाहिद जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, नाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले किया, और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं, और बाबूलाल जी लिखते हैं नाहिद जी का डिमांड मुझे बहुत प्यारा लगा है, और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब नगमा है जी, और अमीना खान जी लिखते हैं कि शानदार पसंद, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। ओके, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है जी, बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो किन का है, वो है हमारे यानी दत्ता करम जी का, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, दत्ता करम जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। यहाँ पे लिखते हैं इस खानम जी कि वह गाना बहुत अच्छा लगा है। वादों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है, और सच में महबूब जो देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है। जी बिल्कुल, ये गाना तो बहुत अच्छा लगा है। और तभी मार जी लिखते हैं कि तो ये वाला भी गाना मुझे बहुत पसंद आया, सच में बहुत ही प्यारा पसंद था, और काजल जी का भी पसंद, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड, थैंक यू सो मच। और दत्ता जी लिखते हैं धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग, और नाहिद जी लिखते हैं वाओ सुपर चॉइस जट्टा कम जी आपका, मजा आ गया सुन के। बाबूलाल जी लिखते हैं दत्ता जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, और अमीना खान लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं दत्ता करम जी को। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मेरे पास वो सुनीता गोप जी का, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं सुनीता गोप जी।

माय गॉड, डिमांड इतने ज्यादा है कि मैं क्या करूं, सभी के डिमांड को मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा। एक्सट्रीमली सॉरी दिल से। राधा कृष्ण गोल भेजते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत डिमांड है, हमें श्रीमती जी का धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड। और नाहिद जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल और शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। ओके, और इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि अजय कुछ जी का है, सुनवाते हैं।

और यहाँ पे अजय कुछ नहीं देंगे, थैंक यू सर जी, हम मेरा गाना प्ले कर दिया है, और प्रमोद जी लिखेंगे वाह वंडरफुल डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा गाना है। और यहाँ एस खानंद लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि बहुत ही ये नाइस पसंद है, ये लिख के प्रीतिया के छाव में ये वाला गाना था और वो पूछने का मौका ही नहीं मिला, वो लहजा बदल गए और हम अजनबी होते गए, आए हाय क्या लिखते हैं आप। अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत पसंद है जी, बिल्कुल। और नहीं लिखते हैं ब्यूटीफुल डिमांड के लिए, बाबूलाल रंजन जी को धन्यवाद देते हैं। और आज़ाद मुमताज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है लुधियाना से। और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं जी। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है रवि मोहरे जी का सुनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पसंद मुझे बहुत पसंद है, इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो गाना है यानी कि बहुत ही प्यारा गाना है, मतलब आप सुन लीजिए, तो है क्या बतलाई हो, यानी कि तुमको मैं क्या बताऊं और तुहे क्या समझाई हो, यानी तुमको मैं क्या समझाऊं कि चांद जैसा तुम्हारा चेहरा, यानी कि जो आपका चेहरा है वो चांद जैसा है जो हमारा

वेलकम बैक। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे दत्तकंद जी लिखते हैं, रवि महर जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। नाही जी लिखते हैं, वाओ वंडरफुल, यहाँ पे वंडरफुल डिमांड के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच रवि महर जी। और एस खानन जी लिखते हैं कि ओ इट वॉज माई फेवरेट सॉन्ग, सच में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी, बिल्कुल ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। ओके, इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि जाकिर खान जी का है। और जाकिर खान जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बैग और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर रवि मुखर्जी के जो डिमांड थी वो बहुत ही प्यारी थी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और यहाँ पे मुन्ना जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुन के तो भाई मिजाज गदगद हो गई। अच्छा सच में का? और यहाँ पे लिखते हैं अनिल मेहता जी के आरजे अमन सर जी बहुत ही शानदार शानदार गाने प्ले हो रहे हैं और आज सुन सुन के बहुत मजा आ रहा है। इसी बात पे यानी कि कायनात जी भी दिख रही है, क्या कहते हैं जरा सुनते हैं ना।

0: बात है।
1: कोई नहीं,
0: बहुत प्यारा।
1: कोई नहीं, सच में मैं यही सोच रही थी, पर मैं तो सो गई थी।
0: ओके जी, तो ये गाना के डिमांड है और ये लिखती है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे रेडियो जॉकी, बोलेंगे जी बिल्कुल। और इसके और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि होता है राजस्थान, जी बिल्कुल, और यानी कि कॉमिक भी होता है, जी बिल्कुल होता है, लेकिन और भी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि रेडियो जॉकी तो आपने सही कह दिया, और रजिस्टर इन जैक भी हो सकता है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, रीजनल जेट भी हो सकता है, और रिस्टोरेटिव यानी जस्टिस भी हो सकता है, और रोड जंक्शन भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज हो सकते हैं, है कि नहीं। फिलहाल आपके पसंद के गाने को मैं प्ले कर, और ओ माय गॉड क्या आवाज पाई है आपने, बहुत प्यारा गुनगुनाया है, सच में दिल गदगद हो गया है। इंजॉय कीजिए अपने इस प्यारे से गाने को।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी आए हुए मेरे पास बहुत सारे। और रवि मार्जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं पहले इनका।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया मेरे गाने को पसंद करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे फीडबैक देने के लिए। क्योंकि सोमवार के दिन
0: बोलिए
1: किस

0: जाती हो तुम।
1: वो तो बात है।
0: सोमवार के दिन ये गाना नहीं बजा तो मजा नहीं आता। और हमारे बुधवार के दिन हमारे प्यारे प्यारे अमन सर जी की पसंद बॉलीवुड मस्ती में ये गाना तो बजना ही चाहिए भाई, मजा आ जाता है। तो हिका बतलाई हो कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो। की चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गई। मजा आ जाता सर जी ये गाना सुनो तो प्रोग्राम में, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल धन्यवाद देते हैं आपको भी इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। और सभी की डिमांड पूरी आज नहीं हो सकती है, और बहुत सारी डिमांडें छूटने वाली हैं। मतलब किन किन का नाम लूं अगर, यानी कि 22 तो ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, और वैसे तो वैसे यहाँ पे यानी मैसेज में भी बहुत सारे दोस्तों के शामिल हैं। सभी छूटने वाले हैं, सभी छूटने वाले हैं। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाना था ये, सारे शहर में आपसा कोई नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा गुनगुनाया है। जी बिल्कुल, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा गुनगुनाया है उन्होंने। और हमारी यहाँ नंदनी मालिक जी हैं कि वाह वाह बहुत बढ़िया गाना। और राधा कृष्ण को भी कि ओल्ड इज गोल्ड इस गाने की डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब, थैंक यू सो मच। एंड हमारी यानी मुन्ना भाई यानी मुंबई वाले लिखते हैं कि माइंड ब्लोइंग सॉन्ग सुनकर दिल खुश हो गया है। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है ये। और जाकिर खान लिखते हैं कि घर से बाहर वो नकाब में निकली, अच्छा घर से बाहर वो नकाब में निकली और सारी गली उनकी फिराक में निकली, इनकार करती थी वो हमारी मोहब्बत से, अच्छा इनकार करती थी वो हमारी मोहब्बत से, पर हमारी हमारी यानी कि तस्वीर उनकी किताब में निकली। ओ माय गॉड, ऐसा भी है क्या। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो आरती तिवारी जी सुनना चाहती हैं, ए बलम परदेसी। एंजॉय कीजिए।

और इसके बाद जो अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ इंजन पिया जी की, और पिया जी सुनना चाहती है फिरो ना नजरिया, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, आपने डिमांड किया, और इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बिल्कुल, इस गाने को जितना बार भी सुनो कभी दिल नहीं भरता है। हर टचिंग सॉन्ग है और इस गाने को सुनने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है और इसे ना सुनो तो सच में नींद भी नहीं आती है। एक बार सुन के देखिएगा आप जरूर इस गाने को। वैसे यहाँ पे फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, नहीं जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। आरती जी का मुझे बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे लिखते हैं अनिल मेहता जी के सुपर सॉन्ग चला है, बहुत अच्छा लगा। और हमारे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है जी बिल्कुल। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि आता नहीं था हमें इकरार करना। अच्छा, लिखते हैं कि आता नहीं था हमें इकरार करना, न जाने हम कैसे सीख गए यहाँ पे प्यार करना, दो पल भी नहीं रुके थे किसी के लिए, लेकिन न जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। हाँ, इंतजार करना, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है कि नहीं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि हम भी जा रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, जाइए क्योंकि हम भी जाने वाले हैं, अभी जस्ट जाने वाले हैं। अभी मैं कॉल लगाऊंगा आज के यानी कि टॉप जो लीडर बोर्ड में बने हुए हैं उनको। नाहिद जी लिखते हैं कि अच्छा, हमारी नंदी माँ लिखते हैं कि सच में ये बहुत मनभावन गाना है। हाँ माँ जी, इस गाने को सुनिएगा डेली, तब आपको दिल खुश हो जाएगा एकदम, मैं तो सुनता हूँ डेली। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डिमांड है, दिल खुश कर दिया है। आज देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड में सब नंबर वन पे कौन बने हुए। नंबर वन पे बने हुए आज हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी, ओके, एक नंबर में ये है, दो नंबर में है अमीना खान जी, और तीन नंबर में है बाबूलाल अंजाना जी, चार नंबर में राधा कृष्ण गोप जी, पांच में नाहिद अंसारी जी, और छह में एस खानम जी, और सात में यहाँ पे मीना इब्राहिम जी, आठ में है एम डी नाजिम जी, और नौ में बिट्टू कुमार जी, और दस में यहाँ संध्या पटेल जी हैं। तो आज के फिर मैं यानी लॉटरी नहीं निकालूंगा, अगर इनका नंबर नहीं लगेगा तो मैं लॉटरी निकालूंगा। तो यानी प्रमोद जी को मैं कॉल लगा ही लेता हूँ जल्दी से बिना देर के हुए, क्योंकि समय कम है मेरे पास।

0: भाई प्रमोद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है, और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते। और भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज आप यानी टॉप लीडर बोर्ड में बने हुए हैं नंबर वन पे, क्या बात है।
1: सर मैं तो हमेशा बनना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों के आगे निकलने के लिए मैं पीछे रह जाता था।
0: कोई बात नहीं, चलिए आज आप नंबर वन पे हैं इसलिए।
1: हाँ, आज
0: जी तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: सर ये वही गाना है, वो दिन याद करो।
0: वो दिन याद करे, वो तो मैं झूठ बोला था।
1: अच्छा जी जी जी जी जी,
0: वो तो मैंने झूठ बोला था। ओके जी, इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: थैंक यू।
0: लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला था यार।

0: बैक और बिना देर के अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ हमारे यानी के फूले बाग संजू भाव जी और गजानंद जी का ग्रुप है वो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं इनका बिना थोड़ा सा ऑडियो प्ले करता हूँ बस।
1: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार। अमन सर जी, कैसन बानी?
0: बहुत बढ़िया भाई, रोना पता नहीं कैसन बानी।
1: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोधवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है बुधवार और आज की अपनी थीम है स्टार बॉलीवुड मस्ती। आज के कार्यक्रम में सभी मस्ती भरे गीत चलने वाले सर, तो हमने भी एक मस्ती भरा गीत चुना है। फिल्म का नाम है डॉन। आप हमें इसी फिल्म का एक गीत सुना दीजिए जिसे मैं आपको गुनगुना के बोलता हूँ। ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा,

और मैं बता दूं यहाँ पे जितना दोस्तों का यानी कि सॉन्ग रिक्वेस्ट में गाना नहीं प्ले हुआ है और कुछ दोस्तों का मैं गाना प्लेलिस्ट में ला के जाऊंगा, आप लोग वहाँ से सुनते रहेंगे। इसमें यानी कि मीना जी का और शौर्य सिंह जी का और यहाँ पे शिल्पा बेन जी का, संतोष सिंह गौंड जी का, मंगेश देशमुख जी का, मोहम्मद जलील जी का और शैलेश सिंह तिवारी जी का और जितेंद्र सिंह जी का, गोविंदा खंडादर जी का, अनिल मेहता जी का, असलम यानी किराना जी का और सुनील कुमार जी बांका बिहार से, हुकुम चंद जी का और हमारे सुभाष सिंह तिवारी जी का, संदीप सुतार जी का, आर्यन राज जी का और निकला जी का, अशोक पाल जी का, इन सभी दोस्तों के गाने यानी मैं प्ले लिस्ट में ला के जाऊंगा। ओके, लेकिन जाते जाते एक गाना मैं जरूर यानी प्ले करके जाऊंगा और वो गाना है ये, इंजॉय कीजिए इस गाने को। इसलिए ये गाना प्ले कर रहा हूँ कि तब तक आप लोग गाने को मैं वहां पे प्लेलिस्ट में लगा दूं।

बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली।

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छू

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: हो ये गाना? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पे यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ ज्यादा आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवारें खास है, जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

देखो ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो

0: मैं रत्ना
1: रत्ना

रेडियो गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.